0: क्या बात है।
1: रुक सके वक्त तुमने जो आंसू हमें दिए, रुक सके वक्त तुमने जो

0: वाह जी,
1: अब तुमने कितने दूर ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर
0: वाह जी,

आओ पहली लाइन अगे पिछे होगी तो होगा, वफा दी मिसाल मर जाइए मार छाल, पर कच्चा कड़ा सोनी ते चनाव चाहिदे, रातां दियां नींदरां चराउण वाली नी सानू, हर एक पल दा हिसाब चाहिदे। मकसद पिछली लाइन बोलनी सी उत्तों रेहड़ी लिया धक्के सुनाउणी सी पिछली पिछली लाइन आवी मैं ना असल मेनु आवी मैं पिछली लाइन सुनाउण करके मैं थोनू हुण गल करन लग गया वा। मर जाना चंगा नित मर मर जीण तो, मर जाना

मर जाना चंगा है मर मर जीण तो, दसके वाले मुकद्दर नू ना रोक हुण पीण तो। बड़ी है

0: जगदा पेट पालदा। पोदी रात होवे जां हाड़ दा महीना, पोदी रात होवे जां हाड़ दा महीना, जेठ दी गर्मी तपदी च वी इह सौंदा कदे ना। जेठ दी गर्मी तपदी च वी इह सौंदा कदे ना। फिर भी इह क्यों इकला रो रो समां गुजारदा, अपनी मेहनत दा फल इह क्यों नहीं हंडावदा, अपनी मेहनत दा फल क्यों नहीं है इह पावदा। कुर्सियां दे मालको कुछ किसान दी खबर सार लवो, कुर्सियां दे मालको कुछ किसान दी खबर सार लवो। ये जगदा अन्नदाता है इसनों ना इग्नोर करो, ये जगदा अन्नदाता है इसनों ना इग्नोर करो। मीह हनेरी चक्कड़ हवावां अपने जिगरे ते ठारदा, मीह हनेरी चक्कड़ हवावां अपने जिगरे ते ठारदा। छत चौंदी पैर नंगे हिरदे ते सबर गुजारदा, छप्पन भोजन संसार नू देंदा खुद भुखा ये मरदा, छप्पन भोजन संसार नू देंदा खुद भुखा ये मरदा। औलाद अपनी भी देश की खातर बॉर्डर ते घलदा, औलाद अपनी भी देश की खातर यह बॉर्डर ते घलदा। मिट्टी नाल मिट्टी होके बंजर धरती सोना उगाउंदा, मिट्टी नाल मिट्टी होके बंजर धरती सोना उगाउंदा। जद मीह नेरी फसल ते हमला करे, जद मीह नेरी फसल ते हमला करे तद होंके भरदा। कुदरत दी मेहर ते कहर ते निर्भर आस लगाउंदा, कुदरत दी मेहर ते कहर ते निर्भर आस लगाउंदा। उम्मीद दे दीवे बलदे बुझदे पानी विच गुआउंदा, उम्मीद दे दीवे बलदे बुझदे पानी विच गुआउंदा बहाउंदा। सियासतदानों कदर करो, सियासतदानों कदर करो, किसानों के मसले हल करो। औरतां जाग पईयां हन हुण बच्चा बच्चा जाग पिया, मसले हल करो हुण वधीकियां ना सहणियां, मसले हल करो हुण वधीकियां ना सहणियां। सारा भारत इक है क्यों वैर कमांदे सियासतदानों, क्यों वैर कमांदे हो सियासतदानों। जग सारा ही नाल है इंसाफ करो सियासतदानों, जग सारा भी नाल है इंसाफ करो सियासतदानों। दशमेश दे चेले हुण जाग पए ने, दशमेश दे चेले हुण जाग पए ने, हक्का इन्हां दी झोली भरने पैने, हक इन्हां दी झोली भरने पैने। जय जवान जय किसान।
1: ਸ਼ਬਰਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਮਲਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਮਲਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਣਾ ਹਮੈਤ ਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਲਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
2: ਆਦਮੀ ਤੂੰ ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਨਾ ਬਣਾ ਤੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਭਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਮ ਕਾ। तू सहारा अगर ना किसी का बना तो ये जीवन तेरा है ये बस नाम का। आदमी तू अगर आदमी ना बना तो ये जीवन भला है ये किस काम का। एक बार ही मिलती है ये जिंदगी, काम आना किसी के है एक बंदगी। एक बार ही मिलती है ये जिंदगी, काम आना किसी के है एक बंदगी। रोने वालों को जो भी

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है।

तो ये जीवन भला है ये किस काम का। जिंदगी का सफर ये सुहाना बने, छोड़ दे तू अगर सारे शिकवे गिले। जिंदगी का सफर ये सुहाना बने।

सदा उसकी ही मौज में खुश रहे, जो सदा उसकी ही मौज में दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में दास सच्चा वही तो है भगवान का। तू सहारा अगर ना किसी का बना तो ये जीवन तेरा बस।

0: अपने करियर दे, अपने लाइफ दे पॉइंट दे कि जी मैं तो हूँ निकलना ही है, 6 7 साल 8 साल अपने भावे में खराब कर लवा। सो इस तरह के जो कोचिंग सेंटर ने उदो पेरेंट्स का अगेन फ्रेंड्स का पीयर ग्रुप का इवन
1: प्रेशर
0: को इवन कोचिंग सेंटर्स का रोल बन जाता है कि बच्चों ढंग ना गाइड करन। 3 4 साल हो गए नहीं निकलता पाया, एंड अगे लाइफ से या तो उन्होंने कहो कि एक टाइम लिमिट दे दो कि भाई इन्ना टाइम तू ट्राई कर ले निकल दो,
1: हाँ
0: उसके बाद अपना प्लान बी ते आ जाओ। एक प्लान बी होना लाइफ से हर चीज से और
1: जरूरी
0: बहुत
1: है,
0: जरूरी हैगा।
1: एक बैकअप
0: एक
1: प्लान
0: बैकअप
1: जरूरी
0: जिवें
1: आने
0: तुहाडे
1: के
0: स्टूडियो से बैकअप प्लान तुहाडे हर चीज का हुंदा हैगा,
1: लिए
0: और बैकअप प्लान लाइफ से होना भी बहुत जरूरी है कि कितने कोई
1: बिल्कुल
0: स्टक करके तो तुसीं प्लान बी ते आ जाओ। तो मेरा
1: जी।
0: कंसर्न यही है कि जो कोचिंग सेंटर से तुसीं जा रहे हो, कोचिंग के बावजूद भी कुछ परसेंटेज 99% तुसीं सक्सेसफुल नहीं रहोगे,
1: हाँ
0: 1% ही
1: जी
0: तुहाडे सक्सेस चांसेस हैगे। उस
1: जी
0: तो बाद अपना जो प्लान बी जरूर अपने नाल रखना चाहिए है, या तो पढ़ाई के नाल कोई जॉब ज्वाइन कर लो, या तुसीं अपना कोई नाल साइड बिजनेस शुरू कर सकते हो। अजकल मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस तरह के काफ़ी
1: सारे आ
0: जोड़े
1: रहे हैं,
0: प्रोग्राम बनते पे ने।
1: बड़े अच्छे
0: तुसीं
1: प्रोग्राम हैं
0: एंटरप्रेन्योरशिप में जाके काफ़ी चंगा इन्वेस्टमेंट दे अजकल साधन बन गए ने, तुसीं
1: जी
0: नाल
1: जी
0: नाल कर सकते हो, नाल नाल अपने ड्रीम अचीव करने का भी जोड़ा है अटैम्प्ट कर सकते हो।
1: बिल्कुल
0: बट
1: बिल्कुल,
0: फेल हो गए, फेल होने तो बाद तुसीं ना उठे, फिर उत्थे करियर जोड़ा है खत्म
1: क्योंकि
0: है।
1: जो फेल हो के फेल पास होना तो जिंदगी का एक उत्थे
0: बिल्कुल
1: यही जिंदगी है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन इतने प्रेशर इन्ना होंगे उत्थे जो आप कोटे की गल करिए जो ईवन जिहड़े साडे सराउंडिंग होर शहरां दे विच वी कोचिंग सेंटर चलते आ, जदों पेरेंट्स उत्थे भेजदे आ बच्चे नूं ओह इहनूं इक ग्रंटड मान लैंदे आ कि हुण उत्थे चल गया, दैट इज बस ये हो गया बन गया जो आप बनाउणा चाहुंदे हो, उस उत्तों बच्चे दे जिहड़ी स्ट्रेस लैवल कितें ज़्यादा बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल
1: तो आपां इह वी देखदे आं बड़ियां दुखदाई खबरां आउंदियां कि उत्थे आत्महत्या कर ली किसी बच्चे ने,
0: बिल्कुल
1: कुछ घट गया वध गया नंबर कुछ ऐसा हो गया, ये एक माड़ा असर जिहड़ा आपां समझदे हां कि पैंदा है बच्चों का। वो प्रेशर है जिहड़ा है उहनूं घट मैनेजमेंट है जिहड़ी स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये बच्चा किवें उहनूं कर सकदा है उत्थे जिहड़ा बंदा उत्थे है।
0: एक हैरानी वाली गल जिहड़ी सामने आ रही है, स्ट्रेस जिहड़ी मैनेजमेंट है फेलियर ते नहीं है, सक्सेस ते भी अजकल स्ट्रेस हो रहा है।
1: अच्छा
0: बच्चे
1: जी
0: जिहड़े फेल मतलब फेल मैं कहूँगा नाकामयाब हो जाते हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम च, उन्होंने की खबर आदि
1: हाँ
0: ने
1: जी हाँ जी
0: कोई किसी फील्ड च चला जाता, मान लो डॉक्टरी कर लेंदा है या किसी
1: जी जी
0: इंजीनियरिंग कर लेंदा है, उत्थे कोई इस तरह की घटना हो जाती है, हंसी मजाक हो जाता है, या फिर उत्थे तुहानू प्रॉपर तुसी अपने करियर च आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो तुसी पढ़ोगे अजकल कॉलेजेस दे विच भी सुसाइड दे जिहड़े केसेस ने काफ़ी
1: आ
0: जिहड़े है
1: रहे
0: बाहर सुनने नू आ रहे
1: आ
0: ने।
1: रहे हाँ जी हाँ जी
0: स्ट्रेस मैनेजमेंट कोई कोई टेक्निक नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट ये नहीं है कि तुसी कोई टेक्निक तुसी उदी स्टडी कर लो तो उस बाद जिस स्ट्रेस नू जिहड़ा मैनेज कर सकते हो। स्ट्रेस तुसी अपने ही तुहानू ही काबू करना बेसिकली,
1: सेल्फ काउंसलिंग ही
0: सेल्फ
1: होगी जी
0: काउंसलिंग, तुसी कुछ अपने आप नू इस तरह किसी चीज़ से रुझा लो, जिवें आपां कहिंदे खेड खेडनी बहुत जरूरी होंदी है,
1: हाँ जी
0: खेड खेडना एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। तुहाडा
1: बिल्कुल
0: कोई लाइफ च इंटरेस्ट है, तुहानू डांसिंग का शौक है, तुहानू सिंगिंग का शौक है,
1: वो भी बिल्कुल
0: तुहानू
1: सही है,
0: जॉगिंग का शौक है,
1: बिल्कुल सही है
0: अद्धा पौना घंटा लाइफ के बीच अपने आफ्टर ड्यूटी आवर्स या आफ्टर तुहाडे जिहड़े स्टडी आवर्स हैं तुसी अद्धा पौना घंटा अपने इंटरेस्ट नू जरूर परस्यू करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी
0: तुसी
1: हाँ जी
0: कितने खेडन जाओ, तुसी डांस करो, बंद कमरे च नचो, बंद
1: बिल्कुल
0: कमरे च गाने गाओ,
1: जी।
0: सारे जिहड़े तुहाडे स्ट्रेस है तुसी देखोगे अद्धे पौने घंटे अपने आप ही सारे डिजोल्व हो जाएंगे, एंड तुसी अपने अगले दिन की तैयारी करनी जिहड़ी है
1: बिल्कुल
0: शुरू कर
1: बिल्कुल
0: दोगे,
1: बिल्कुल
0: पुराना दिन भुल के नवे दिन की तैयारी करोगे। सो बेसिकली जदों भी कोई बच्चे नू स्ट्रेस आंदा है या कोई उन्हें लगता है कि मैं कुछ अपने नाल गलत करने बारे सोचता है, एक बारी जरूर अपने पेरेंट्स का, अपने भैन भरावों का, अपने
1: बिल्कुल
0: परिवार का ध्यान जरूर करे कि उन्होंने इन्नी मेहनत बाद 15 20 साल ला के मैनू इतने तक
1: ये कीता है
0: पहुंचाया है,
1: सारा
0: तो मैं
1: फैर
0: अपनी
1: फैमिली
0: एक
1: ने,
0: सेकंड की जिहड़ी भूल नाल वो सारा कुछ मिटावा ना, उन्होंने वाइट वॉश ना करा।
1: बड़ी
0: जे इस
1: वड्डी
0: तरह
1: गल
0: अपने
1: बिल्कुल
0: पेरेंट्स का ध्यान पेरेंट्स नाल प्यार होगा, अपनी फैमिली नाल प्यार होगा, कदे भी इस तरह का स्टेप जिहड़ा नहीं ले सकते।
1: नहीं नहीं लेना चाहिए जी बिल्कुल जी, ये तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए है। और ये मैनूं लगता है कि स्कूल के विचों शुरू तो ही पेरेंट्स नूं भी एक माहौल दे विच होनी चाहिए है, ताकि वो बंदा जिहड़ा कई तो बंदे काफ़ी नैगेटिव चले जाते हैं नॉर्मली, जिहड़ा ओवरऑल एक चलो बैलेंस्ड लोग बनाने कामयाब हो जाते हैं, एक बायस जेंडर बायस जिहड़ा है उसकी आपां जे गल करिए तो आप उन्होंने पहले ही कहता जाता है कि हाँ यू आर गर्ल तुम सिर्फ आडे वास्ते है स्पैसीफिक, तुम ये तो बुलावा नहीं पुछना, ये एक रुझान जोड़ा ये तो कदम लगे कि किस किस तरह का रुझान है
0: शमी जी आपां ना हुण पुरानी गल्लां कर रहे हैं
1: जी
0: अजकल दा, क्योंकि वही पुरानी गल्लां अपने ना माइंड च हजे भी इनहेरिट हैगियां
1: है कि
0: कि
1: कितने
0: गर्ल्स नूं मौका नहीं मिलता या गर्ल्स अग्गे नहीं आंदियां। मैं पहला भी क्या सी थानू ओलंपिक्स की आप गल
1: हाँ जी,
0: करिए,
1: हाँ जी,
0: इस बार
1: बिल्कुल,
0: ओलंपिक्स के विच पीवी सिंधु, साक्षी
1: हाँ
0: मलिक, दीपा
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कर्माकर, मैं तुम्हें एक गल दसदा, शायद इन्नी प्रेज इन्नी रिकॉग्निशन किसी मेल एथलीट ना मिलती जिन्नी प्रेज जिन्नी
1: उन्होंने
0: रिकॉग्निशन
1: मिलती,
0: इन्ना फीमेल एथलीट्स नू मिलिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: लोकी बोलते बहुत कुछ होंगे, बहुत कोई पुरानी मेंटेलिटी दिए कुछ बयान आते होंगे, बट मैनू ऐसा लग रहा है कि अपना देश जरा बदल रहा है, हुण
1: चेंजेस आ रहे हैं
0: चेंजेस
1: जी,
0: बिल्कुल पॉजिटिव चेंजेस आ रही ने।
1: बिल्कुल
0: हुण कोई सक्सेस जो किसी कुड़ी नू मिलता हैगा, आई गैस सारे ही लोगों को उन्नी ही खुशी होंगी है जिवें
1: वेलकम
0: उन्हों की
1: करते
0: कोई
1: हैं, बिल्कुल
0: उन्होंने भैन उन्होंने कोई घर की परिवार की मैंबर ने कि जिवें वो खुश हुई। मैं आप मैच वेख्या से पीवी सिंधु वाला,
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल
0: तुसी
1: जी, ठीक
0: साढ़े घर चो कोई बैडमिंटन नहीं वेखता, कोई खेडता नहीं हैगा,
1: है, हाँ जी,
0: सारे परिवार ने उत्थे घट्टो घट 20-25 जनों ने टीवी के अगे रह के मैच वेख्या, तो जो उन्हें सेमीफाइनल जितया तुम यकीन नहीं मनोगे इन्ना असी नचे, मेरी
1: सही है, सही गल
0: आईएससी
1: है,
0: सिलेक्शन होने इन्ना नहीं लोग नचे होंगे जिन्ना उत्थे नचे
1: क्या
0: होंगे,
1: पता,
0: पूरे
1: वाकई
0: पूरे
1: वो
0: बाजार के
1: बिल्कुल
0: बीच इस तरह
1: सुने
0: का
1: हैं मैंने,
0: माहौल सेगा।
1: सही गल है ना,
0: ते कहने का भाव यही है कि अजकल का जो साडा सोसाइटी है वो बदल रही है, होपफुली अगर होर पॉजिटिव चेंजेस आनी है,
1: बिल्कुल बिल्कुल नहीं,
0: बट जे किसी कुड़ी नू रिकॉग्निशन मिलती है अपनी मेहनत नाल उन्हें रिकॉग्निशन हासिल की है, साक्षी मलिक हरियाणा तो
1: हाँ जी,
0: आपा
1: हाँ
0: कहने
1: बिल्कुल
0: लोएस्ट
1: बिल्कुल,
0: लोएस्ट एक्सरे शो हैगी हरियाणा
1: हाँ जी,
0: दे
1: हाँ
0: विच,
1: जी,
0: हरियाणा इन नॉर्दर्न इंडिया दे विच, बट स्टिल देखो किन्नी उन्होंने नू रिकॉग्निशन मिली।
1: यानी एवरी क्लाउड है जो सिल्वर लाइनिंग आप
0: एब्सोल्युटली
1: कहीए, तो ये सिल्वर लाइनिंग भी हुण जिहड़ी है धुप्प च तब्दील होंदी जा रही है, तो क्लाउड जिहड़े है उन्होंने लगभग बस्ट कर ही लिया आपां, क्लाउड बस्टर हो चुके हैं,
0: ये नहीं, अब तुसी
1: उजाला आ रहा है,
0: सिविल सर्विसेज वेख लो, कोई तुसी मेडिकल दे कोई एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आंदा सब च कुड़ियां अगे आ रहीयां ने, अब हुणे
1: जी
0: बोर्ड दे रिजल्ट्स आए उदों कुड़ियां सब तों अगे सीगियां,
1: जी जी जी
0: कुड़ियां रिकॉग्निशन हासिल कर रहीयां ने, मेहनत कर रहीयां ने, असीं जस्ट जिवें अपने बच्चियां वांग आपां कुड़ी मुंडे लईए ना, आपां बच्चे ना ना
1: हाँ जी, हाँ
0: लईए,
1: जी,
0: जिवें
1: बिल्कुल,
0: बच्चा नूं इक्को इक्को वर्गा आपां सपोर्ट देना, इक्को वर्गी
1: हाँ
0: ग्रूमिंग देनी है,
1: फिर गल ही खत्म हो जाती
0: सारी मैं कह रहा सारी गल्लां दा अपना सार ही यही है
1: यही है,
0: कि
1: बिल्कुल
0: जदों बच्चा वध रहा उग रहे हैं, पौधा उगता हूँ बच्चा
1: बिल्कुल,
0: उग रहा
1: हाँ
0: हैगा,
1: जी, हाँ
0: उदो
1: जी,
0: आप उन्होंने प्रॉपर खाद देती, पानी लाता,
1: बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल
0: ध्यान
1: जी,
0: लाता, ट्री गार्ड लाता,
1: बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल,
0: बच्चे ने अपने आप ही एक वधिया जड़ा बूटा है वो बन जाना हैगा, उस तो
1: अगे
0: बाद उन्हें आप ही अपनी केयर कर लेनी।
1: बिल्कुल सही जी, बहुत वधिया सर, आखिर विच जाते जाते तुसी कोई पेरेंट्स नू बच्चों नू साडे सुनने वाले दोस्त जिहड़े ने उन्हां नू कोई मैसेज देना चाहो,
0: मेरा मैसेज बस यही है कि पेरेंट्स जिहड़े साडा टाइम ही, मैं इस तरह ज़्यादा उम्र नहीं हैगी मेरी, बट
1: जी
0: 15-20 साल पहला जिहड़ा सिस्टम सीगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच हुंदे सीगे पेरेंट्स नाल, मोबाइल इंटरनेट फेसबुक ये सब चीज़ा नहीं हुंदियां सीगियां,
1: जी
0: असी आ के स्कूल तो बाद पेरेंट्स नाल गल्लां करदे सीगे, उन्होंने दसदे हुंदे सी कि मम्मी अज साडे नाल स्कूल दे विच ये होया, साडे फ्रेंड्स ने ये
1: जी जी
0: कीता, साडे टीचर्स ने ये कीता, वो जड़ी एक प्रथा हैगी साडे देश की वो खत्म नहीं होनी चाहिए। हुण बच्चे
1: बिल्कुल
0: अजकल आंदे ने या तो वीडियो गेम तो लग जाएंगे, फेसबुक सारे दे फेसबुक दे विच अकाउंट हैगे, मोबाइल दे गेम्स
1: वो एक,
0: मोबाइल्स
1: हाँ बिल्कुल जी,
0: तो लग जाएंगे, पेरेंट्स नूं चाहिदा है कि अपने बच्चों नूं घट्टो घट 1 या 1.5 घंटा रोज़ देन, उन्हां नूं पुछन कि तेरा दिन अज किवें लंघिया, कि
1: जी जी
0: स्कूल दे
1: जी
0: विच
1: जी
0: की होया, भावें
1: बिल्कुल,
0: तुहानूं नॉलेज है या नहीं है। मैं मेडिकल च सी,
1: हाँ
0: मेरी
1: जी,
0: मम्मी मैनूं पुछदे हुंदे सीगे कि अज तेरा मेडिकल कॉलेज च की गया, की कीता, की चीरा फाड़ी
1: ठीक,
0: कीती,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ये भी
1: ठीक
0: मैं
1: है,
0: उन्होंने दसदा हुंदा सीगा।
1: क्या
0: ते इस
1: बात है,
0: तरह का जो तुहाडा कनेक्ट एस्टैब्लिश हो जाना है, टेक माई वर्ड, तुहानूं पूरी लाइफ पूरे करियर अपने बच्चे की चिंता करने की लोड़ नहीं है, और
1: जी
0: जो
1: जी
0: वड्डा भी हो जाऊगा तुहानूं दसूगा कि मम्मी मैं अज ये कीता, दसो तुहाडा क्या, तुहाडा कनेक्ट भी बना रहूगा, तुहाडा प्यार भी बना रहूगा, तो बच्चा भी तुहाडा जिहड़ा है वो बहुत अगे उहदा करियर शेप होगा।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब बहुत मजा आया अज सारिया गल्लां करके, बहुत ही वधिया जिहड़े विचार ने दोस्तां नाल सांझे कीते, बहुत खुशी हुई, तो
0: थैंक यू शमी जी, थैंक यू।
1: दोस्तों अज आपां ने गल्लां कीतियां, तुसीं सुन रहे सी डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल जी, IAS SDM दसूहा जी दे विचार आपां सुने अज, ते बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर दुआबा रेडियो वालों, ते इसी तरह ही आपां दुआबा करांगे, साडे दोस्त इसी तरह सुनते रहन, ते प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट, ते बहुत जल्दी आपां फिर हाजिर होवांगे एक नवे प्रोग्राम के नाल, नवी शख्सियत के नाल, धन्यवाद बहुत बहुत, ते मुस्कुराते रहो, खुश रहो, रब रखा।